सती अधीशत आच गौतिमा औषधि नादिया बा वंदो ये आच आरती ये अंगिशी या नाच चेतोले ये अस्थान के दास खेंस गो आरो ये अस्थान बोलता दी बाइबल स्टडी ये आ बा नालते तोले नीज नाल के दास खेंस अपन गो आरो अस्थान गो ये तो दी पार लगता हो डिनर ये तो हो आतोले आरो ये दी खलने गो इगिशी आज या डेनियल स्माइली ये आज या खलने Although, yeah, the Roman Abel chapter, the Office of Grants and Contracts,